0: अगर तुम न निकलोगे तो खुदा तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा जो खुदा के पूरे फरमाबरदार होंगे और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे और खुदा हर चीज पर कुदरत रखता है।
1: इल्ला तंसुरूहु फकद नसरहु अल्लाह इज़ अख

की बात सोचेंगे वो बिल्कुल बरहक थी। चुनाचे मुशकीन ने मदीने से 32 मील दूर मकामे रोहा पर पहुंचकर जब पड़ाव डाला तो आपस में एक दूसरे की मलामत की, कहने लगे तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, उनकी शौकत और कुव्वत तोड़कर उन्हें यूं ही छोड़ दिया, हालांकि अभी उनके इतने सर बाकी हैं कि वो तुम्हारे लिए फिर दर्द सर बन सकते हैं, लिहाजा वापस चलो और उन्हें जड़ से साफ करो। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये सतही राय थी जो उन लोगों की तरफ से पेश की गई थी जिन्हें फरीकैन की कुव्वत और उनके हौसलों का सही अंदाजा न था। इसीलिए एक जिम्मेदार अफसर सुफवान बिन उमैया इस राय की मुखालफत की और कहा लोगो ऐसा ना करो, मुझे खतरा है कि जो मुसलमान गजवाए ओहद में नहीं आए थे वो भी अब तुम्हारे खिलाफ जमा हो जाएंगे, लिहाजा इस हालत में वापस चले चलो कि फतह तुम्हारी है, वरना मुझे खतरा है कि मदीने पर फिर चढ़ाई करोगे तो गर्दिश में पड़ जाओगे। लेकिन भारी अक्सरियत ने ये राय कबूल ना की और फैसला किया कि मदीने वापस चलेंगे। लेकिन अभी पड़ाव छोड़कर अबू सुफियान और उसके फौजी हिले भी ना थे कि मुआबद बिन अबी मुआबद खजाई पहुंच गया। अबू सुफियान को मालूम ना था कि ये मुसलमान हो गया है। उसने पूछा मुआबद पीछे की क्या खैर खबर है? मुआबद ने कहा प्रोपेगंडे का सख्त एसाबी हमला करते हुए कहा मोहम्मद अपने साथियों को लेकर तुम्हारे ताकुब में निकल चुके हैं, उनकी जमीयत इतनी बड़ी है कि मैंने वैसी जमीयत कभी देखी ही नहीं, सारे लोग तुम्हारे खिलाफ गुस्से से कबाब हुए जा रहे हैं, ओहद में पीछे रह जाने वाले भी आगे हैं, वो जो कुछ जाया कर चुके उस पर सख्त नादिम हैं और तुम्हारे खिलाफ इस कदर भड़के हुए हैं कि मैंने उसकी मिसाल देखी ही नहीं। अबू सुफियान ने कहा अरे भाई ये क्या कह रहे हो? मुआबद ने कहा वल्लाह मेरा ख्याल है कि तुम कूच करने से पहले पहले घोड़ों की पेशानियों को देख लो या लश्कर का हरा दिल दस्ता इस टेले के पीछे नमूदार हो जाएगा। अबू सुफियान ने कहा वल्लाह हमने फैसला किया है कि उन पर पलट कर फिर हमला करें और उनकी जड़ काट कर रख दें। मुआबद ने कहा ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी खैर खाही की बात कर रहा हूँ। ये बातें सुनकर मक्की लश्कर के हौसले टूट गए, उन पर घबराहट और रोबतारी हो गया और उन्हें उसी में आफियत नजर आई कि मक्के की जानिब अपनी वापसी जारी रखें। अलबत्ता अबू सुफियान ने इस्लामी लश्कर को ताकुब से बाज रखने और इस तरह दोबारा मुसल्ला टकराव से बचने के लिए प्रोपेगंडे का एक जवाबी असाबी हमला किया, जिसकी सूरत ये हुई कि अबू सुफियान के पास कबीला अब्दुल कैस का एक काफिला गुजरा। अबू सुफियान ने कहा क्या आप लोग मेरा पैगाम मोहम्मद को पहुँचा देंगे? मेरा वादा है कि इसके बदले जब आप लोग मक्का आएंगे तो उकास के बाजार में आप लोगों को इतनी किशमिश दूंगा जितनी आपकी ये ऊँटनी उठा सकेगी। उन लोगों ने कहा जी हाँ। अबू सुफियान ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुँचा दें कि हमने उनकी और उनके रुफका की जड़ काट देने के लिए दोबारा पलट कर हमला करने का फैसला किया है। सामईन यहाँ पर एक वक्फा और वक्फे से वापस आकर हम अपने इसी सिलसिले को मजीद आगे लेकर बढ़ेंगे।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया और मेरा नाम है डॉक्टर अमारा मसूद फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मोजिस सामीन, आज हम आपसे बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये जो रीसेंट ट्रेंड्स और रीसेंट वर्ल्ड में जो इसके प्रॉब्लम्स हैं, हम इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं और किन चीजों को हम मद्देनजर रखकर और इस फील्ड को और अपने स्टूडेंट्स को इससे मजीद फायदा हासिल करवा सकते हैं। आज के इस शो में मेरा साथ देंगी डॉक्टर हिरा मुबीन। शी इज करंटली सर्विंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम मैडम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: क्या हाल है आपका?
1: मैं ठीक हूँ, मैं समारा, आप बताएं।
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैडम, बस आपसे आज हम इसी मौजू पे बात करना चाह रहे हैं कि मैडम आपने देखा है कि कुछ रीसेंट पिछले 4-5 साल से एक ट्रेंड में जो फील्ड्स चल रही हैं वो ये कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी। बेशक हम इन फील्ड्स की इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम आज इस टॉपिक पे यहाँ पर लेकर बैठे हैं कि हम ये बात करना चाहते हैं कि क्या इन डोमेन्स के बाद बायोटेक्नोलॉजी या जो बेसिक साइंसेज हैं क्या उनकी अहमियत कम हो गई है? क्या आज के दौर में सर्वाइव करने के लिए और बाकी सब मुख्तलिफ कामों के लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी और डिफरेंट डोमेन्स जो साइंसेज की हैं इनके ऊपर हम चाहते हैं कि आज हम अपने सामईन को इस बारे में आगाही दें कि बाकी डोमेन्स जरूर अच्छी हैं, आती जाती भी रहती हैं, लेकिन इससे ये नहीं होता कि पिछली फील्ड जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं बड़े अरसे से उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। डेफिनेटली कुछ अरसे के लिए एक फील्ड रोटेशन में आती है, उसके बाद अगली फील्ड आ जाती है। तो डॉक्टर हिरा, थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या और आप इसको वर्ल्ड में किस तरह से रिलेट करेंगी?
1: थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमारा। पहली बात तो ये कि हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी फील्ड की इम्पोर्टेंस कम हो गई है। हर चीज़ का एक वक्त होता है और वक्त के साथ साथ आपको पता है टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ज़रूर है और बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हम ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं, हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम बेटर मेडिसिन प्रोड्यूस करना चाहते हैं या हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ करके इन सब चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम कहते हैं कि हम लाइफ्स को हेल्थियर बना सकते हैं, सेफर और बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है। और बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी बेस्ड हम कह सकते हैं मॉडर्न साइंस का एक वो है ट्रेंड, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों में इनोवेशंस और बहुत सारी चीज़ों में प्रोडक्शन के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू और डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करके लोगों को सेफर लाइफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं।
0: ये डॉक्टर हिरा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं इस चीज को सेकंड करूंगी आपकी बात को कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी मिक्सचर ऑफ डोमेन्स है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंसेस, इंजीनियरिंग। अब इसमें हम लिविंग सिस्टम्स के सेल्स की बात करेंगे, जीन्स की बात करेंगे, माइक्रोब्स की, प्लांट्स की बात करेंगे और किस तरह से इनसे हम प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, सॉल्यूशंस बना सकते हैं, किस चीज के लिए, ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये बेसिकली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है ग्लोबली। इसके अलावा अगर आप रिसेंटली भी अभी देखें तो ये जो COVID-19 का पेंडेमिक गुजरा है, इसमें वैक्सीन डेवलपमेंट जो थी वो बायोटेक के उससे हुई थी, प्लेटफॉर्म से। सिमिलरली आप सब लोग ही जानते हैं डायबिटीज के लिए इंसुलिन, इसका प्लेटफॉर्म भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है और बेसिकली ये बायोटेक की डोमेन है। सिमिलरली हम मिलियंस ऑफ पीपल को डेली बेसिस पे फीड कर रहे होते हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन और इससे रिलेटेड सारा काम ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। सिमिलरली आप अगर कहें कि जी आप DNA बेस्ड डायग्नोसिस करना चाहते हैं कुछ डिजीजेस को स्टडी करने के लिए, इवन नए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए, तो ये काम भी बायोटेक की अम्ब्रेला के अंदर आता है। तो इसका मतलब यही है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री, इन सबको अगर हम कहें कि हम एट वंस स्टडी कर रहे हैं तो दिस बेसिकली कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा मैडम, मैं आपसे एक बात और पूछूंगी कि आपकी फील्ड के हवाले से, स्पेशली हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से, पाकिस्तान में क्या एडवांसमेंट हो रही है, कौन सा काम है जिसपे आजकल बहुत काम हो रहा है? और आपको पता है रीसेंट ट्रेंड में जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये चीजें भी बहुत हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आप अपनी फील्ड को रिलेट करें ये इस रीसेंट ट्रेंड्स के साथ, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं समारा, ऐसा है कि हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि डिफरेंट कलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं जिनमें रिसर्च हो रही है, तो हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारा ऐसा काम जो डायग्नोस्टिक्स में, जेनेटिक्स में, जीनोमिक्स में एडवांस मेथड्स यूज करके अब हो रहा है. पहले बहुत सारी डिजीजेस ऐसी थी जो डायग्नोसिस तक नहीं जाती थी और उनके लिए कोई ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज या आप कह लें सोल्यूशंस अवेलेबल नहीं थे. अब जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं या बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रिसर्च लेबॉरटरीज हैं, वो मिलकर काम कर रही हैं. रिसर्चर्स जो हैं दे आर प्रोवाइडिंग सम सजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस. और इसी तरह जब वो डेटा रिसर्चर्स हमारी चूंकि फील्ड है रिसर्च की, तो हम यहाँ पे जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिसर्च करवाते हैं, उसके बाद हम उन प्रोजेक्ट्स में से उनको पब्लिकेशंस की तरफ लेकर जाते हैं, उससे जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं हम वो डॉक्टर्स तक पहुँचाते हैं और डेफिनेटली डॉक्टर्स उस पर हमें फर्दर ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं या उन मरीजों को वो ट्रीट करने के लिए उनको फर्दर नए से नए रास्ते या सोल्यूशंस मिलते हैं.
0: थैंक यू मैडम. यहाँ पर हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक. सुनते रहिएगा FM 92.6 UCP की.

0: वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अमारा मसूद फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मेरे साथ आज गुफ्तगू में शरीक हैं डॉक्टर हेरा मुबीन एंड शी इज करंटली सर्विंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम आज बात कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको BS, MS और PhD ऑफर करता है बायोटेक्नोलॉजी में, और इसके अलावा हम MS फोरेंसिक साइंस और MS क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी ये भी ऑफर करते हैं। इसी हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। हमने अभी ब्रेक से पहले थोड़ी BS के हवाले से बात की थी, तो डॉक्टर हेरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो हम MS बायोटेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं और MS फोरेंसिक साइंस ऑफर कर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, क्या UCP कोई स्कॉलरशिप हमें देता है और इसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है?
1: थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमारा। बिल्कुल, हमारे पास जो MS बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री है ये एक रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है, और इसमें चूंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसका स्कोप हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, फूड में, नैनो टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट में और इंडस्ट्री में है, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको प्रैक्टिकल स्किल्स पे एक्सपर्ट करते हैं, हम उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हैं। इसमें जो रिसर्च डोमेन्स हैं हमारे पास, जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें मोलेकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स और नैनो बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो उस पर हम उनको काम करवा रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये सवाल होता है कि हमारी जो करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी डिग्री कम्प्लीशन के बाद, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो दे कैन बी प्लेस्ड इन टू अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। वो रिसर्चर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस में उनकी जॉब हो सकती है, डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल लेबोरेटरीज का पार्ट बन सकते हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कुछ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसका भी पार्ट बन सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि इसमें बहुत सारी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें वो जिनको अडॉप्ट करके वो डिफरेंट जगह पर उनकी जॉब प्लेसमेंट हो सकती है।
0: मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगी, और हमारे पास यहाँ पर रियल टाइम PCR की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और इसके अलावा हमारे पास बड़े अच्छी कोलैबोरेशंस हैं जिसमें हम सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं कि हम उनको सीक्वेंस भेज के अपना प्लांट का, बैक्टीरिया का, इनका सिक्वेंसिंग करवा के और बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। डॉक्टर हेरा, MS फोरेंसिक के हवाले से भी हमें बताएं कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो MS फोरेंसिक में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ये हमारा बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम जा रहा है और काफी लॉयर्स और इवन पुलिस ऑफिसर्स वगैरह भी MS फोरेंसिक साइंसेज में डिग्री लेना चाहते हैं, तो थोड़ा इसकी इम्पोर्टेंस बताएं कि UCP ने ये जो इनिशिएटिव लिया है इस पे हमारे कैरियर स्कोप वगैरह क्या है?
1: जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और लकीली वी आर ऑफरिंग दिस प्रोग्राम एज वेल। इसमें हमारे पास चूंकि स्टेट ऑफ आर्ट लैब्स हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं, और चूंकि आपको पता है कि फोरेंसिक की डिफरेंट डोमेन्स हैं, जैसा कि फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है, DNA सीरोलॉजी है, डिजिटल फोरेंसिक्स है, ठीक है, इसके अलावा आप इसमें डिफरेंट फील्ड्स में रिसर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो DNA प्रोफाइलिंग पे काम कर सकते हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स सीख सकते हैं, फिर फोरेंसिक्स में एंटी नारकोटिक्स की डोमेन में जा सकते हैं। तो हमारे पास चूंकि इसमें भी बहुत सारी ऐसी लैब्स अवेलेबल हैं और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ये भी एक बहुत अच्छी और इमर्जिंग फील्ड है, और इसमें हमें अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि वो MS फोरेंसिक साइंसेज में एडमिशन लें और इसको एज अ करियर परस्यू करें। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग प्रोग्राम नाउअडेज।
0: बिल्कुल डॉक्टर हेरा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं बिल्कुल सेकंड करती हूँ आपकी बात को, और स्पेशली जब हम नॉर्मली पेरेंट्स हमसे यही क्वेश्चन करते हैं कि जी हम MS बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इवन MS फोरेंसिक हो गया, उसके बाद जी स्टूडेंट जो हैं वो क्या करेंगे, तो हम उनको जो हमारे अलमनाए हैं उनके बारे में बताते हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेके, इवन फुल ब्राइट और ये दाद स्कॉलरशिप अवेल करके, और वो मतलब अब्रॉड में बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज में सर्व कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें यही कहूंगी कि इसके कैरियर स्कोप में सब रिसर्च और एकेडेमिया के ग्रेजुएट्स कैन इजीली परसू एन MS और PhD इन पाकिस्तान और इन अब्रॉड, एंड दे कैन डू गो इनटू डिफरेंट रिसर्च कैरियर्स। बहुत सी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज मे बी वो RA की या रिसर्च असिस्टेंट की जॉब कर सकती हैं। सेकंड आ जाती है जी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इसके अलावा सीड कंपनीज, आपकी एग्री बायोटेक की कंपनीज, ठीक है, फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज, आपकी डायग्नोस्टिक लैब्स, ये सब की सब वो इंडस्ट्रीज हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं, ठीक है, और खास तौर पर उन ग्रेजुएट्स को जिनका कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, इंटर्नशिप वगैरह बच्चों ने की होती है थोड़ा। थर्डली मैं आपको करियर प्रोस्पेक्ट्स में ये बताना चाहूंगी कि ये जो हमारी ग्रोइंग फील्ड है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, और जीनोमिक डेटा एनालिसिस की, जिसके ऊपर आजकल वर्ल्ड वाइड ये नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग का डेटा और इसके ऊपर काम हो रहा है, QTL एनालिसिस हो रहा है, मार्कर्स को, जीन्स को आइडेंटिफाई करना और उनको किसी ट्रेड्स के साथ लिंक करना, ठीक है। तो यानी सिक्वेंसिंग जो है वो डे बाय डे अब चीपर होती जा रही है, क्योंकि हमारे पास रिसेंट अब एलिमिना सिक्वेंसिंग और बहुत सी ऐसी अप्रोचेज आ गई हैं जो एक दिन में आपको ये ब्लड सैंपल और ये आपको पूरा DNA एनालाइज करके दे देती हैं। उसके बाद उस DNA को, उस जीनोमिक डेटा को इंटरप्रेट करना, उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, तो ये इस वक्त एक कैरियर पाथ बन चुका है। और हमारे पास आपको पता है बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर डेटा बहुत अवेलेबल है, लेकिन उसकी एनोटेशन एनालिसिस उसके ऊपर अभी बहुत काम करना बाकी है। तो अगर कोई ऐसा बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट होता है जिसकी बायोटेक्नोलॉजी की डोमेन में भी थोड़ी अच्छी ग्रिप होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और इसके अलावा वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इनको भी ऑपरेट करना जानता है, तो वो तो एक बिल्कुल एसेट है। स्पेशली आजकल पाइथन लैंग्वेज में अगर कोई बच्चे काम कर रहे हैं तो वो फ्रीलांसिंग करके बड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं। फिर हम ये रेगुलेटरी रोल्स में, क्वालिटी रोल्स में, आप ये फूड सेफ्टी की जो इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, उन पे काम कर सकते हैं। और लास्टली एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, हम अपने स्टूडेंट्स को सेकेंड सेमेस्टर थर्ड से ही ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आप काम करना शुरू करें, क्योंकि हमारे अब यहाँ पे बहुत से सेटअप ऐसे हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह और उसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं, एग्रीटेक में और प्रिसीजन फार्मिंग में स्पेशली बड़ा काम हो रहा है। तो डॉक्टर हेरा, आप मुझे थोड़ा बताएं फिर के अब मजीद हमारी कोलैबोरेशन और कोलैबोरेटर्स कौन कौन से हैं जिनके साथ हम और इफेक्टिव इस चीज को लेके चल सकते हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर, हमारा ऑलरेडी हम बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और इसमें ना सिर्फ हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हमारी हैं जिसमें हम अपना डेटा जो है वो बाहर से एनालिसिस करवाते हैं। इसमें हम ना सिर्फ ये कि हम अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी ये काम कर रहे हैं, और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि डिफरेंट जो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं उसके हवाले से भी हम उनके साथ कोलैबोरेट करें। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये जो फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम आराम से किसी भी फंडिंग एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करके अपने प्रोजेक्ट्स रन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्किल्स चाहिए, इसके लिए हमें एक्सपर्टीज चाहिए, इसके लिए हमें स्टूडेंट्स को ये बताना ज़रूरी है कि हम इस फील्ड में रहते हुए कुछ प्रोजेक्ट प्रपोज करें और उन प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट वो हम फंडिंग लें और उनसे इसके ज़रिए हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसी तरह हम हॉस्पिटल्स के साथ और इसके अलावा डिफरेंट फार्मा कंपनीज के साथ और एग्रीकल्चर फर्म्स के साथ और फूड इनोवेशन सेंटर्स के साथ और बहुत सारे डिफरेंट जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके हम अपने फंड्स को गेन कर सकते हैं। और अपने, चूंकि हमें इसके लिए जितनी भी फंडिंग हो वो कम होती है, हमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, एनालिसिस करना है, तो इसी तरह से हम कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हो सकते हैं, हम इनोवेशंस ला सकते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको खुद भी प्रमोट करें और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करें कि वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और इसको एक्सप्लोर करें।
0: और इस पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली हमारी फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में NRPU की जो ग्रांट है वो भी विन की है डॉक्टर मदिया ने, और डॉक्टर हेरा ने इटसेल्फ जो है वो कॉम्स्टेक की ग्रांट विन की है। तो हमारे टीचर्स जो हैं वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और इनके साथ और प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़े फोकस्ड हैं, और उसमें फिर हम अपने ही स्टूडेंट्स को एज एन रिसर्च असिस्टेंट यहाँ पे हायर करते हैं, और यहाँ पर हमारे फंड्स, इंटरनल यूनिवर्सिटी हमें फंड्स देती है मोर देन 1 बिलियन के आप इसके ऊपर काम करें। हम छोटी छोटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए अपने BS के स्टूडेंट्स को 50,000 तक फंड देते हैं कि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के नाम पे हमसे फंड्स ले लें, जस्ट प्रपोज योर आइडिया और अगर वो अच्छा लगा तो हाई अप्स आर देयर टू सपोर्ट यू। तो प्लीज़ आप ये बायोटेक्नोलॉजी का जो डोमेन है इसको एक्सप्लोर करें। UCP में ये डोमेन 2015 से हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफर कर रहे हैं। हमारा पहला बैच 2019 में पास आउट हुआ था, वो स्टूडेंट्स अब बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के आप उनकी सक्सेस स्टोरीज देख भी सकते हैं, उनको लाइक भी कर सकते हैं। तो इसी ऊपर काम करें, और BS, MS और PhD बायोटेक्नोलॉजी एंड MS फोरेंसिक साइंस एंड MS क्लाइमेट चेंज वगैरह, ये ऑफर्स हमारी बायोटेक्नोलॉजी के डोमेन से आ रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हेरा फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई एम डॉक्टर अमारा मसूद साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: when you are off.
1: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز ایک نئی
4: سوچ
3: एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
3: जब मिलती है लगन,
4: मेहनत,
3: कामयाबी और खुलूस,
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया।
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
3: सुनते रहिए।
5: अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अली हसन आप खिदमत में हाजिर हूँ और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। और आज हम प्रोग्राम मुमकिन का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें मेरे गेस्ट मोहम्मद उसामा शाद यहाँ मौजूद हैं, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर और साथ ही साथ गेमर हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और मीडिया इंडस्ट्री में एक नाम बना चुके हैं। 4.5 साल से इनका एक्सपीरियंस है और बहुत से इनके फॉलोअर्स यूट्यूब और गेमिंग इंडस्ट्री में है। लिहाजा वक्त बचाते हुए अपने गेस्ट की तरफ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम उसामा।
6: वालेकुम अस्सलाम,
5: कैसे हैं आप?
6: मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लिहाजा आप सुनाएं।
5: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है उसामा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने अपना खसूसी वक्त निकाला हमारे FM के लिए।
6: जी बहुत शुक्रिया, आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया।
5: जज़ाकअल्लाह। उसामा, आपकी ज़िंदगी का वो ऐसा कौन सा लम्हा था, क्योंकि हर कामयाब इंसान, जो इंसान सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है कामयाबी की, उसकी ज़िंदगी में कोई एक मखसूस ऐसा लम्हा होता है जहाँ पे वो सोचता है कि अब मैंने ज़िंदगी में इस काम का आगाज़ करना है, तो आपकी ज़िंदगी में वो मखसूस कौन सा एक लम्हा था जब आपने सोचा कि मुझे यूट्यूबिंग करनी चाहिए, मुझे यूट्यूबर बनना चाहिए?
6: जी अली हसन, पहला ही सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। देखिए, मुझे ऐसे लगता था कि मुझे कुछ ना करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी पहचान बने। मतलब कि मुझे, मतलब कि हम, मैं फेसबुक पर जो है ना सबसे पहले वीडियोस बनाया करता था, कुछ ऐसे, वो लाइक ही एक ऐप है, उसके ज़रिए वीडियोस एडिट करके ना लगाता था, और जब लाइक्स आते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लोग कमेंट्स करते थे। तो फिर मैंने देखा कि लोग यूट्यूब पे जैसे हज़ारों व्यूज़ लेते हैं, मैंने सोचा कि ये जो यूट्यूबर्स हैं इनको हज़ारों व्यूज़ मिल रहे हैं, तो अगर मैं बनाऊँ मुझे चंद 100 अगर व्यूज़ मिल जाएँ तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। चंद 100 अगर व्यूज़ मिल जाएँ, कुछ लाइक्स मिल जाएँ, तो फेसबुक पर जब मुझे लाइक मिलते थे, कमेंट्स मिलते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैं यूट्यूब पर आया और वहाँ पर मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की।
5: माशाल्लाह, ग्रेट। उसामा, बेसिकली आपके नाउ दिस टाइम कितने चैनल्स हैं और उन पे कितने कितने सब्सक्राइबर हैं, काइंडली वो हमारे ऑडियंस को बताइएगा।
6: जी अनफॉर्चुनेटली मेरा जो सबसे पहला चैनल था ना वो डिलीट हो गया है, और वो स्ट्राइक्स की वजह से, वो कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई थी, एक गेम है क्लैश ऑफ क्लैन, वो जिस कंपनी ने बनाई है सुपर सेल, उसने स्ट्राइक्स भेजी थी क्योंकि मैंने कुछ हैकिंग के रिलेटेड कंटेंट बना दिया था। मुझे कोई यूट्यूब का इतना टर्म्स एंड कंडीशंस का नहीं पता था, तो वो मैंने हैकिंग के रिलेटेड कंटेंट बना दिया काफ़ी देर बाद, जब मेरे 70,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, 70,000, तब जाकर मैंने एक ऐसा कॉन्टेंट बनाया जो हैकिंग के रिलेटेड आता था, और वो कंपनी ने स्ट्राइक्स भेजकर, 3 स्ट्राइक्स पर चैनल डिलीट हो जाता है 3 मंथ्स के अंदर अगर 3 स्ट्राइक्स आती हैं, मुझे 4 स्ट्राइक्स आई थी और वो चैनल उसी टाइम टर्मिनेट कर दिया गया था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा से मैंने चैनल बनाया और इस टाइम मेरे चैनल पर जो है वो 45K सब्सक्राइबर्स हैं।
5: माशाल्लाह अमेजिंग। तो आप काइंडली अपने चैनल के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि कितनी वीडियोस आपकी चल रही हैं या कब कब आती हैं, 2 वीक का गैप देते हैं, वीक का गैप देते हैं, कितने व्यूज नॉर्मली आ जाते हैं, काइंडली इस बारे में थोड़ा बताइए।
6: जी बिल्कुल अली हसन, ये ना स्टार्ट करना तो बड़ा इजी होता है, लेकिन जब आपको पता लगता है ना कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ रिस्पांस नहीं आ रहा, स्टार्टिंग का टाइम बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर आपके पास व्यूज नहीं आ रहे होते तो आप परेशान होते हो, इसीलिए लोग यूट्यूबर नहीं बन सकते ज्यादा, लोग वो मार खाते हैं यहाँ से कि वो जब स्टार्ट लेते हैं ना उन्हें व्यूज ही नहीं मिलते, वो समझते हैं कि पता नहीं बहुत मुश्किल ये काम है, वो छोड़ जाते हैं, जबकि सबसे मुश्किल काम ही स्टार्ट करना है। जब आप स्टार्ट करते हो आपके पास ना ऑडियंस होती है, ना आपको कॉन्टेंट क्रिएट करना आता है, बस आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करते हैं और समझते हैं कि मुझे व्यूज मिल जाएंगे जिस तरह बाकी लोगों को मिलता है, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूसली वीडियोस बनाते रहना होगी, आपको जब लोग आहिस्ता आहिस्ता आपको पजीराई मिलना शुरू होगी, लोग आप लोगों तक रीच होगी आपकी वीडियो की, तभी लोग आपको देखना चाहेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, शुरुआत में नहीं होता।
5: बिल्कुल समय डेडिकेशन हर काम में बेहद जरूरी होती है, जब तक आप एक काम के स्ट्रगल ना दें उस चीज में तो वो कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। बिल्कुल उसामा, नहायत जरूरी सवाल की तरफ जाना चाहूंगा जो हमारे ऑडियंस जिसको सुनने के लिए बेताब होंगे, यकीनन हर डिजिटल क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, हर किसी की जिंदगी में पैसों का असूल बहुत ज्यादा जरूरी है।
6: बिल्कुल।
5: तो लिहाजा मेन क्वेश्चन की तरफ आऊंगा कि वो कौन सा जिंदगी का ऐसा वक्त था, ऐसा टाइम था जब आपको पता चला कि मेरी यूट्यूब से पहली इनकम आ चुकी है, और वो कितनी थी, कैसे आई, वो लम्हा कैसे था, कैसे आपने उसको एंजॉय किया, तो काइंडली उस बारे में थोड़ा बताइएगा।
6: बिल्कुल अली हसन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आपको पता चले कि ये मेरी कमाई हुई इनकम है, और कम एज के अंदर जब आपको पता चलता है कि मैं इनकम जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि बहुत सारे लोग जब भी यूट्यूब की बात होती है ना, तो लोग यही कहते हैं कि अच्छा YouTube है तो आप कितने पैसे कमाते होंगे, या फिर YouTube पर आते ही इसलिए लोग कि हम इससे पैसे कमा सकें, जबकि YouTube पर आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो किसी पैसों की नहीं होगी, वो बल्कि टाइम की, आपको सिर्फ टाइम स्पेंड करना है यहाँ पर आपको, और आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं यहाँ से बहुत सारी अर्निंग करूँगा, क्योंकि जो एक्सपेक्ट करते हैं ना मैं YouTube से अर्निंग करने के लिए YouTube चैनल क्रिएट कर रहा हूँ, वो बहुत जल्दी चैनल छोड़ जाते हैं। मुझे अपने चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए 1.5 साल लगा था पहला चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए, ये जो अब मेरा चैनल है इसको मैंने 6 मंथ के अंदर, जो है ना 6 मंथ के अंदर मैंने मोनेटाइज कर लिया था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था पिछले एक प्रीवियस चैनल का, तो प्रीवियस चैनल में मुझे 1.5 साल लगा, और उस 1.5 साल में मैंने कोई पैसा नहीं कमाया और सिर्फ मेहनत ही की है, और वीडियोस बनाता चला गया एक डेडिकेशन के साथ, और उसके बाद जाकर मुझे फिर जो है ना मोनेटाइज हुआ और अर्निंग हुई, ना सिर्फ गूगल एडसेंस के थ्रू बल्कि उसके बाद फिर पेड प्रमोशंस भी आने लग गई, और फिर मैं लिंक शॉर्टनर वेबसाइट, मिसाल के तौर पर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है ना किसी वेबसाइट को जिसको मैंने रेफर करना है, या किसी ऐप को उसका लिंक दिया होता है, उस लिंक के थ्रू भी मैं अर्निंग करना शुरू हो गया, कि वो डायरेक्टली व्यूअर लिंक पर नहीं पहुंचता था, पहले कुछ एड्स उसके सामने शो होते थे, फिर उसके बाद वो उस पेज पर जाता था जो ओरिजिनल जहां पर उसने पहुंचना होता था।
5: माशाल्लाह अमेजिंग उसामा। उसामा एक और नहायत ज़रूरी सवाल की तरफ जाना चाहूँगा कि गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में एक रॉन्ग मिथ्स बनी हुई है सोसाइटी में कि गेमिंग इंडस्ट्री अच्छी नहीं होती बच्चों के लिए, या गेमिंग इंडस्ट्री एक रॉन्ग डायमेंशन है, वालदैन ये समझते हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि गेमिंग इंडस्ट्री में पाकिस्तान का नाम बहुत से लोग ऊपर ले गए, टेकन गेम्स खेलते रहे हैं,
6: और पाकिस्तान नाम का लड़का
5: बेशक ऐसी अरसलान, उन्होंने पाकिस्तान का एक नाम रोशन किया है दुनिया के सामने। सो आप कितना जरूरी समझते हैं कि अगर किसी बच्चे को गेम्स खेलने का शौक है, पैशन है, तो उसको ये फील्ड को कंटिन्यू करना चाहिए?
6: जी बिल्कुल, आज तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पेरेंट्स के माइंडसेट इस टाइप के हैं कि वो समझते हैं कि जो गेमिंग है ना ये तबाह कर रही है बच्चों को, लेकिन कुछ ऐसा है भी, लेकिन अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ करना शुरू कर दोगे ना वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। अब सिर्फ गेम खेलना ना वो इतना आपके लिए कारगर साबित नहीं होगा, अब आप उस गेम को खेल कर उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो और साथ एक अट्रैक्टिव सा पीछे वॉइस ओवर करके आप अपलोड कर दो, तो आप गेम खेल कर ही उसको पॉजिटिव यूज़ कर रहे हो और उससे अर्निंग भी कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ गेम खेलते हैं, वहां से अर्निंग नहीं होती। तो मेरी भी रिकमेंडेशन यही होगी कि कोई भी काम है ना आप उसको ये सोचो कि इसको पॉजिटिव वे में मैंने कैसे यूज करना है और वहां से फिर अर्निंग भी होगी। और आजकल तो आप यूट्यूब चैनल अगर बना लो, फेमस हो जाओ, तो फिर अर्निंग तो आपको हर तरफ से ही होती है।
5: बिल्कुल ऐसे ही है उसामा। यहाँ मेरे एक सवाल है जो कि नामुकम्मल है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको मुकम्मल करें। वो आपकी एज कितनी थी जब आपकी पहली अर्निंग आई और आपके उस टाइम एहसासात क्या थे जब आपने पहली इनकम अपनी बैंक से ली होगी या किसी जगह से आपने रिसीव की, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, आपके वालिदैन की क्या फीलिंग्स थी?
6: जी अली हसन, पहले तो मेरे वालिदैन मुझे मना करते थे कि यूट्यूब पे वीडियोस ना बनाओ, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। मैंने 2018 में अपना चैनल शुरू किया था और उस वक्त मेरी प्री 9th क्लास शुरू हुई थी, तो उस वक्त मैंने शुरू किया तो क्लास भी थोड़ी मुश्किल थी क्योंकि प्री 9th शुरू हुई थी, 9th क्लास थी, और वालिदैन भी मना करते थे कि वीडियोज़ ना बनाओ, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। और मैं जब वीडियोस बनाता चला गया, जब वहाँ से उनको पता लगा ना कि यहाँ से अर्निंग भी होती है, उनको मतलब मुझे भी ऐसा फील होता था कि ये जो लोगों को अर्निंग होती है ये कैसे होती है, मुझे भी एक तजस्सुस था क्योंकि मैंने भी अभी तक यूट्यूब से कोई कुछ भी नहीं कमाया था। लेकिन वो ना जब आपका एडसेंस का अकाउंट बनता है ना, वो आपका पिन वेरिफिकेशन करते हैं, आपके घर के ऊपर ना एक पिन कोड भेजते हैं। जब वो मेरे घर के ऊपर पिन कोड आया ना सिंगापुर से, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा जब ये पिन आ सकती है तो पैसे क्यों नहीं आ सकते मेरे घर तक। तो फिर ऐसा ही हुआ, फिर जब मेरी यूट्यूब से पहली इनकम आई तो वो $100 नहीं थी। यूट्यूब से जब तक $100 ना हो तो आप निकलवा नहीं सकते, तो $100 फिर सेकंड मंथ में जाके हुई जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, फिर उसके बाद वो $100 से ज़्यादा थी वो अमाउंट। और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हुए, मेरा उस टाइम पे कोई बैंक अकाउंट नहीं था, मैंने अपने पापा का अकाउंट लिंक किया और उन्होंने ही पेमेंट रिसीव की।
5: बिल्कुल ऐसे ही, उनको उस वक्त पे आप पे बहुत ज़्यादा फख्र महसूस हुआ होगा।
6: जी बिल्कुल।
5: इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हम इनसे डिस्कस करेंगे कि जब लाइफ में ये डिमोटिवेट हुए तो इन्होंने अपने आप को कैसे पुश किया और मोटिवेशन की तरफ आए।

0: इस हुनर कदा में हम सदा कार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: उसामा, हर कामयाब शख्स की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब वो डीमोटिवेट होता है। वो कहता है कि अब मैंने इस काम को नहीं करना, मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। इवन बहुत से डिजिटल क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स के लाइफ में ऐसा टाइम आ जाता है कि वो अपनी फील्ड से दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो तंग आ जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये वो काम है जिसमें कॉन्टीन्यूसली इनकम नहीं आती। आपके कॉन्टेंट पर मैटर करता है कि वो फेमस जाए ना जाए, उस पर व्यूज आए ना आए, और फिर वो व्यूज डायरेक्टली आपके इनकम पे डिपेंड कर रहे होते हैं। सो आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, नहायत जरूरी सवाल है कि लाइफ में ऐसा लम्हा आया जब आप डीमोटिवेट हुए, और अगर हुए तो आपने ओवरकम कैसे किया उससे?
2: जी बिल्कुल अली हसन, ये YouTube पे वीडियोस बनाना ऐसा ही है कि मतलब यहाँ पे आपको नहीं पता होता कि कौन सा कंटेंट ऑडियंस को पसंद आएगा, कौन सा कंटेंट नहीं। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ पता लगता रहता है। तो इस वजह से किसी मंथ में आपकी अर्निंग बढ़ती है, किसी मंथ में आपकी अर्निंग कम होती है, कभी आपको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कभी आपको बहुत सारी परेशानियाँ फेस करने को मिलती हैं, तो जिसकी वजह से डीमोटिवेशन भी होती है। लेकिन जब इंसान को पता हो ना कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो या कोई भी अपनी लाइफ में काम हो, उसको पता हो ना कि उसकी इनर जो फीलिंग्स है वो सेटिस्फाई होना, तो वो काम को मेरे ख्याल से अपने हिसाब से उसको करते रहना चाहिए, और यही एक मोटिवेशन भी हो सकती है।
1: बिल्कुल उसामा, ऐसे ही है। बाकी उसामा, एक आपसे नहायत इम्पोर्टेंट बात एक और करना चाहूँगा कि जैसे कि आपका ताल्लुक गेमिंग इंडस्ट्री से था, आप गेम्स को खेलते थे, तो ऐसे साथ ही आपने उसको यूट्यूब पे प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि गेमिंग इंडस्ट्री से अगर इनकम नहीं होती तो हम यूट्यूब से कमा सकें। तो हमारी यूथ को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो जिन डोमेन्स में काम कर रहे हैं उनको डायरेक्टली वो डिजिटल मीडिया से कनेक्ट करें, ताकि वो भी इनकम के सोर्सेज की तरफ आएं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: जी अली हसन, मैं कहना चाहूँगा कि हमें ना ये देखना पड़ेगा कि ऑडियंस की क्या डिमांड है। हमें ये नहीं देखना कि हम क्या अच्छे से कर सकते हैं, हमें ऑडियंस की डिमांड के मुताबिक, हाँ कैटेगरी हमें वो चूज़ करनी है जो हमारे लिए बेस्ट है, जो हम जिस पे बहुत ही मीन्स के आज हम देखते हैं कि लोग व्लॉग बनाते हैं तो हर बंदा व्लॉग बनाना शुरू कर देता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जो कोई बंदा दिखाता है, मीन्स के उसके पास एक अच्छी गाड़ी है और अच्छा घर है, वो दिखाता है और ऑडियंस उसको देखती है, या उसका एक स्टोरी टेलिंग उसकी बहुत कमाल है, वो दिखाता है तो लोग उसको देखते हैं, क्योंकि उसके पास एक रीज़न है कि लोग उसको देखें। आपने ये देखना कि आपके पास क्या रीज़न है जो लोग आपको देखें। मैं भी जब यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसे लगता था कि जिस तरह लोग वीडियोस बनाते हैं मैं इनको कॉपी करके बना लूँगा, तो मैंने ऐसे ही किया। स्टार्टिंग में मैं ऐप्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता था, गेमिंग के रिलेटेड नहीं बनाता था, मैंने ऐप्स के रिलेटेड बनाना, ऐप्स के रिव्यूज़ जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने करने, मैंने भी उन्हीं ऐप के रिव्यूज़ कर देने, बहुत सारी वीडियोज़ देखनी, और एक कंक्लूजन जो उनका मेरे जहन में आना वो मैंने उस ऐप के रिलेटेड रिव्यू दे देना, जो भी नया ऐप आया हो या जो भी नई गेम आई हो। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं गेम की तरफ आ गया, क्योंकि ऐप्स पर ऑलरेडी इतने टेक के जो थे यूट्यूबर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे कि वो सारी स्पेस वही कवर कर लेते थे, सारे व्यूअर्स को वही कवर कर लेते थे। छोटे जो क्रिएटर्स हैं ना वो फिर नीचे ही रह जाते थे, उन तक व्यूज़ ही नहीं आते थे। तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि अच्छा गेम्स जो है ना वो बहुत वाइड रेंज में खेली जाती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो ये नहीं देखते कि ये बड़ा यूट्यूबर है छोटा यूट्यूबर है, वो बस थंबनेल अट्रैक्टिव हो, टाइटल अट्रैक्टिव हो तो उस पर क्लिक करते हैं। तो फिर मैंने गेम्स के रिलेटेड गेम्स भी छोटी छोटी, स्टार्टिंग में मैंने सबवे सर्फर्स जैसी गेम्स के रिलेटेड वीडियोज़ बनाना शुरू की थी, और जो न्यू गेम्स आती रहती हैं उसके रिलेटेड बनाना शुरू की थी। तो फिर इस तरीके से आपको खुद ही आइडिया होता रहता है, जब आप स्टार्ट कर लेते हैं ना तो आपको आइडिया होता रहता है कि अच्छा मुझे आगे क्या करना है। हमारा मसला यह है कि हम स्टार्ट ही नहीं करते, हम सोचते हैं जब तक हम प्रोफेशनल नहीं हो जाते ना इस काम में हमने स्टार्ट ही नहीं करना।
1: बिल्कुल ऐसे ही है उसामा, जब इंसान मीडिया इंडस्ट्री में आता है, कंटेंट क्रिएशन में आता है, उसको पता होता है कि इससे बहुत से पैसे मैं कमाने वाला हूँ, क्योंकि वो सेलेब्रिटीज़ को देख रहा होता है, जो सोशल मीडिया के सेलेब्रिटीज़ होते हैं, यूट्यूब के सेलेब्रिटीज़ होते हैं, वो उनको देख रहा होता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनके व्लॉग्स वगैरह देख रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि आने वाले वक्त में मैं भी इस जगह पे हूँगा। लेकिन जब वो स्टार्ट लेता है पहली वीडियो से अपने अकाउंट की मोनेटाइजेशन तक, वो जो एक टाइम पीरियड होता है जहां आप बिल्कुल जीरो इनकम के साथ, आपकी कोई इनकम नहीं आ रही होती और रेगुलर आपको वो अपनी वीडियोस पे काम करना पड़ता है, तो वो एक डेढ़ दो साल का जो फेज होता है मुख्तलिफ होता है जो आपके कंटेंट पे मैटर करता होता है, तो वो फेज जो होता है वो कितना मुश्किल होता है कि बगैर पैसों के आप कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं।
2: बिल्कुल अली हसन, ये सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये हमारी ओवरऑल लाइफ में भी अगर हम देखें, हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने इनिशियल को दूसरों के फाइनल्स के साथ, दूसरों की जो सक्सेस होती है ना हम उसको कंपेयर कर रहे होते हैं अपने इनिशियल के साथ। मींस के एक कोई शख्स आता है तो मैं सोचता हूँ वाह यार इसके पास तो बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, हालांकि हमें ये नहीं पता होता कि वो उसने वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत किया, क्या हमने उतनी मेहनत किया वहां तक पहुंचने के लिए। तो जब हम उतनी मेहनत करेंगे तब हम अपने आप को उसके साथ कंपेयर करें कि हमारे पास गाड़ी नहीं है ये वाली जो उसके पास है। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, हमें ना कोई रास्ता हमें अच्छा नहीं लगता, हमें जो उसकी जो डेस्टिनेशन है ना वो अच्छी लग रही होती है, तो जो रास्ता हमें अच्छा लगेगा ना हमें उस पर चलना चाहिए, क्योंकि मंजिल तक तो वही पहुँचेगा ना जो रास्ते की सख्तियों को झेल सकेगा। तो सिर्फ मंजिल को सामने रखना काफ़ी नहीं है, आपको रास्ते की मुश्किलात को झेलना चाहिए। जो भी आपको मींस के यूट्यूब से अगर रिलेटेड बात करें ना, तो लोगों के अक्सर ये एक्सक्यूजेज होते हैं कि मेरे पास तो कोई इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास तो अच्छा कैमरा नहीं है, मुझे तो बोलना नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जब अपने वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, हालांकि मैं अभी सीख रहा हूं, अभी तो मैंने स्टार्ट लिया, सीख रहा हूं अभी, लाइफ में बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन मैंने जब अपनी वीडियो स्टार्ट की थी बनाना तो मैं फेस कैम पहले वीडियो बनाता था, अब मैं सिर्फ अपनी वॉइस ओवर बीच में ऐड करता हूँ। मैंने एक 4 मिनट की पहली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए 2 घंटे लगाए थे, क्योंकि मुझे नहीं बोलना आ रहा था, हर बात पे मैं अटक जाता था। आप मेरे सामने अगर बैठे हो तो मैं आपके आपकी आंखों में देख के बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सामने बैठे हैं। जब आपके सामने सिर्फ माइक है और आप अपने रूम में हैं, पता ही नहीं आपको ऑडियंस, आप देख ही नहीं रहे और पहली दफा बोल रहे हैं बगैर कोई ऑडियंस के, आपको लगेगा मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं और वो नहीं बोला जाएगा आपसे। तो ये बड़ा मसला होता है और यकीनन होना भी चाहिए, मुझे भी हुआ, बाकियों के साथ भी होता होगा कि उन्हें बोलना ही नहीं आता होगा, कि हमें वैसे तो बड़ा कॉन्फिडेंस है लेकिन जब स्टेज पे आते हैं या माइक के सामने आते हैं तो हम भूल जाते हैं, जो ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल ही माइंड। तो ये प्रैक्टिस के साथ ही होता है, अगर हम घर से ही नहीं निकलेंगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे।
1: बिल्कुल ऐसी है, ग्रेट उसामा, बहुत अच्छी आपने बात की। तो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि क्या आप ये चीज़ ज़रूरी समझते हैं कि हम लोग सिर्फ YouTube तक महदूद ना रहें, हम अपने उसी कंटेंट को TikTok और डिफरेंट Facebook जैसे प्लेटफॉर्म, इंस्टा वगैरह पे, हम उस पर भी अपने अकाउंट्स बनाएं ताकि हमारी अर्निंग एक प्लेटफॉर्म से स्टॉप हो रही है तो दूसरे से हम कमा सकें। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल तो ये जो शॉर्ट वीडियोज़ है ना ये लॉन्ग वीडियोज़ की निस्बत ज़्यादा वायरल हो रही है, और अब तो यूट्यूब ने भी मोनिटाइज करना शुरू कर दिया है, फेसबुक पे भी जो आप लॉन्ग वीडियोज़ देखते हैं वो मोनिटाइज होना शुरू हो चुकी हैं, और इंस्टाग्राम ने अब रील्स जो है मुतारिफ करवाई है, काफ़ी देर पहले की करवाई है लेकिन मैं उससे पहले की वीडियोस बना रहा हूँ तब रील्स नहीं आई थी, और उसके बाद टिकटॉक भी नहीं तब आई थी, लेकिन अब जो शॉर्ट वीडियोस है ना, जो स्टोरी टेलिंग लोगों की है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑडियंस को ग्रैप कर रही है। तो फ्यूचर इसी का है, जिसको स्टोरी टेलिंग आती है ना, अब हम देखते हैं जो शॉर्ट वीडियोस क्रिएटर्स होते हैं ना वैसे स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं, अब हो सकता है हकीकत से उसका ताल्लुक हो ही ना। मीन्स के मैं कहूँ कि आज मैं घर से निकला, मेरे घर के बाहर एक कोई फ्रूट बेचने वाला था, उसको मैंने ये कहा, उसने मुझे ये कहा, और हो सकता है कि वो जो मैं उसके साथ कन्वर्सेशन बता रहा हूँ वो ओरिजिनल में ना हो बल्कि मैं एक स्क्रिप्ट आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए ये स्टोरी टेलिंग आपको आनी चाहिए।
1: बिल्कुल उसामा, बिल्कुल मैं आपकी बात से यकीनन सेटिस्फाइड हूँ, और एक बात मैं ज़रूर आपसे इसमें पूछना चाहूँगा कि ओरिजिनल कंटेंट कितना ज़रूरी है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ओरिजिनल कंटेंट आपका होना बहुत ज़रूरी है, आपको पता ही है यूट्यूब के ऊपर आप ओरिजिनल कंटेंट अगर नहीं बनाते तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकता है, तो इसलिए आपको ओरिजिनल कंटेंट बनाना चाहिए। और एक पिछला आपने जो सवाल पूछा था उसकी एक बात मेरे जहन में आ गई कि अब एक ऐसे कुछ ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं कि आप उसको परमिशन दे दो अपने सोशल अकाउंट्स की, वो आपको एक वीडियो जो आपने अपलोड किया ना वो खुद ब खुद सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर देगा, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी, ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं।
1: जी उसामा बहुत शुक्रिया, एक छोटे से ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद हम उसामा से मेन बात की तरफ आएंगे कि एडसेंस का अकाउंट कैसे वेरीफाइड होता है, उससे कैसे अर्निंग होती है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म एडसेंस से हमें पैसे देते हैं।

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

دا آواز دے دا لاہور دا آواز دے دا یو سی پی نو آو رہی FM 92.6 UCP کی دنیا

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बस अब हमें और तुम्हें मिलकर आगे बढ़ना है।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is 92.6.
2: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीबी की दुनिया. आपके अपने प्रोग्राम जुगनू के साथ हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब अज़हर शुजाहत साहब से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट के. तो अज़हर भाई, बात हो रही थी ब्रेक से पहले यूथ के हवाले से काम करने की, कि माशाल्लाह 60% ऑफ पॉपुलेशन यूथ है, तो अगर इसके चैनलाइज करें इसके पोटेंशियल को तो ही मुल्क तरक्की करेगा.
3: बिल्कुल.
2: और इसमें अभी एक बड़ा चंक जो है वो ख्वातीन का है.
3: सही.
2: तो बात वुमेन एम्पावरमेंट से शुरू करते हैं कि उसके हवाले से क्या प्रोजेक्ट्स आपके अभी रनिंग में है, कोई काम इस पे आप कर रहे हैं अभी?
3: जी बिल्कुल हमाद भाई, हम लोग जिस तरह जब से हमने ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाई है और हम फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इसके हवाले से हमारे दो प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है. एक हमारी जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, उसमें ओवरऑल तो हमारे हर प्रोजेक्ट्स में वुमेन एम्पावरमेंट है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में दो गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जेंडर इक्वालिटी और एक जेंडर इनइक्वालिटीज़. तो उन दोनों गोल्स के ऊपर काम करते हुए हम इन्हीं को ही आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं. और दो प्रोजेक्ट्स जिस तरह मैंने बताए हमारे ऑन गोइंग है, उसमें हम फीमेल्स को एंगेज करते हैं थ्रू यूनिवर्सिटीज़. यूनिवर्सिटीज़ जो फीमेल्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, जिनकी एज ब्रैकेट जो है वो 16 to 24 होती है. आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत बड़ा फुकदान है, तो हम उन फीमेल्स को कैपेसिटी बिल्ड करते हैं. मिसाल के तौर पे उसमें हम सॉफ्ट स्किल्स का काम करते हैं और टेक्निकल स्किल्स का काम करते हैं. और इसमें हमारे साथ कलेबोरेशन में कुछ इदारे हैं, जिस तरह UCP भी हमारे साथ इसमें कलेबोरेशन में, हमने यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं. और इसी तरह हम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ गवर्नमेंट इदारों के साथ मिल के हमारे पास कलेबोरेशन है, जहाँ हम उनके इंस्टीट्यूट्स में जाके उनके स्टूडेंट्स और या जो दूसरी फीमेल्स हैं आउट ऑफ यूनिवर्सिटीज फीमेल्स हैं, उनको भी हम एंगेज करते हैं. और वहाँ पे हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस होते हैं, या हमारे आप कह सकते हैं कि हमारे पूरे कोहरेट होते हैं. कोहरेट का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि सिर्फ आपने एक बार जो है वो स्टूडेंट्स को बुलाया और आप उनकी कैपेसिटी बिल्ड करके या एक दो सेशंस उनको दे के छोड़ देते हैं. हम उसका पूरा एक मॉड्यूल डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हमारे तीन जो है वो सेशंस होते हैं, या थ्री डेज हम 3 वीक्स में 3 बार स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और उनको हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स होते हैं. और फिर हम उनको फील्ड में भेजते हैं कि आप जाएं, आप फर्दर जो है इसको जो आपने लर्निंग्स की है उनको आप इम्प्लीमेंट करें, या जो आप लर्निंग कर चुके हैं उसको मल्टीप्लाई करें थ्रू डिलीवरेंस. तो डिलीवरी में वो क्या होता है कि हम उनको स्कूल्स में भेज देते हैं कि आप लोग स्कूल में जाएं, इस तरह से उनको एज अ ट्रेनिंग स्किल्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप स्कूल में जाके बच्चों के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप जो आपने सीखा है वो आप उनको प्रोवाइड करें और ट्रेनिंग्स करवाएं, सेशंस दें, अवेयरनेस सेशंस या कैपेसिटी बिल्डिंग सेशन. तो इस तरह से वो बच्चों को भी डिलीवरेंस हो रही होती है और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ एंगेज होते हैं, फीमेल्स और मेल्स भी इसमें होते हैं, तो उन लोगों की ट्रेनिंग स्किल्स भी इन्हेंस हो रही होती हैं फर्दर.
2: दैट्स ग्रेट जी. देखा जाए तो हमारे मुल्क में ख्वातीन को अपनी जो हेल्थ एंड हाइजीन के हवाले से उस पर भी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है.
3: बिल्कुल.
2: लाइक जो रूरल एरियाज़ में हैं ख्वातीन हैं, उनको कईयों को पता ही नहीं कि अपने हाइजीन की कैसे केयर करनी है.
3: जी जी.
2: और अगर हम देखें अर्बन में भी, तो वहाँ पर एक चीज़ का बड़ा फुकदान है कि अवेयरनेस हम अपने बच्चों को देते हैं, बहुत घबराते हैं. हम सोचते हैं कि अपने बच्चों को ये चीज़ बताएंगे तो शायद वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा इनको चीज़ें ना बता दें, हम वक्त से पहले ना बता दें.
3: बिल्कुल.
2: जबकि जो वो बच्चियाँ जो अभी बचपन से लड़कपन की तरफ जा रही हैं, उनको ज़रूरत है बताने की कि उनकी बॉडी में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और उसको कैसे उन्होंने मैनेज करना है. तो हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस चीज़ को टैबू समझा जाता है.
3: जी.
2: तो इस पर कोई काम आप कर रहे हैं इस हवाले से कोई?
3: जी बिल्कुल. जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया कि UNFPA के साथ एक हमारा प्रोजेक्ट रहा है, जो हमने रिसेंटली अभी 4-5 माह का प्रोजेक्ट था और हमने अभी रिसेंटली दिसंबर में उसको वाइंड अप किया है. और उसमें हमने ऑलमोस्ट जो है 155 फीमेल्स विद ट्रांसजेंडर्स, यानी कि 50-50% क्राइटेरिया के ऊपर हमने 155 जो फीमेल्स और ट्रांसजेंडर हैं उनको हमने अवेयरनेस सेशंस दिए हैं और उनको हमने यानी कि HIV/AIDS और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स से रिलेटेड जो भी यानी कि उनकी ज़रूरियात हैं, या समझ लें कि अब उनकी हमने काउंसलिंग की है. अब काउंसलिंग इस तरह से है कि हमारा यानी कि एक प्रॉपर क्लिनिक बना हुआ है जहां हम वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं विद सिक्रेसी एलिमेंट, यानी कि उन कॉन्फिडेंशियलिटी को हम इम्प्रूवमेंट की तरफ लाते हुए हम वहां पे जिन लोगों को वो ज़रूरत होती है उनको बुलाते हैं, उनको हम सिक्रेसी एलिमेंट को बरकरार रखते हुए उनको हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा फिर हम कम्युनिटी में अवेयरनेस सेशंस करवाते हैं और यूनिवर्सिटीज़, जैसे मैंने पहले बताया कि हम कलेबोरेशन में हैं तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी सेशंस होते हैं। ये हमारा अर्बन एरियाज़ में जो है वो प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं। रूरल एरिया में अभी उस तरह से नहीं है, लेकिन जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फ्लड्स आया था, ये मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ और हमारे इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में इसके ऊपर हमारी जो है ना वो रहेगी कि हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है कि रूरल एरिया में फीमेल्स के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ती हैं और इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं।
2: दैट्स ग्रेट जी, इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे अगले सेगमेंट में और साथ में ऐड करेंगे इंटरव्यू हामनी के हवाले से आपके प्रोजेक्ट्स को, लेकिन इस वक्त हुआ एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का। सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीबी की दुनिया। आपके अपने प्रोग्राम जुगनू में हम आज बात कर रहे हैं जनाब असद शुजात साहब से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट के। तो असद भाई, बात हम कर रहे थे बिफोर द ब्रेक कि ख्वातीन की हेल्थ के हवाले से आप माशाल्लाह काफ़ी काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। हमारे मुल्क में तो माँ और बच्चे की हेल्थ के हवाले से बहुत काम होने की जरूरत है, और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में कुछ गवर्नमेंट ने भी हाईलाइट किया है इसको कि स्टंटेड ग्रोथ का बड़ा इशू है हमारे यहाँ। अब उसकी वजह यही है कि मेल न्यूट्रिशन, प्रॉपर केयर नहीं है, माँ को प्रॉपर खुराक नहीं मिलती, और ना माँ परवाह कर रही होती है ना हस्बैंड परवाह कर रहा होता है जिसके हाँ बच्चा होना होता है कि वो देखे कि मैं अपनी बीवी को कुछ अच्छी खुराक दूँ, बच्चा हेल्दी हो। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर नए मसाले शुरू हो जाते हैं, नए खर्चे बढ़ जाते हैं, सो खुराक की कमी का मसला मजीद बढ़ जाता है, सवेर हो जाता है। तो ये मेल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा इशू है, इस पर बहुत से इदारे काम कर रहे हैं। आपने भी माशाल्लाह इस पर काम शुरू किया है, ख्वातीन की हेल्थ के हवाले से, जेंडर बायस के हवाले से भी काम कर रहे हैं, और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस दे रहे हैं, तो बड़ी बात है जी माशाल्लाह। इसी तरह एक और बड़ा मसला हमारे यहाँ जो वो टॉलरेंस का भी है। बहुत से मजाहिब के मानने वाले हमारे यहाँ रहते हैं, मुस्लिम अक्सरियत का मुल्क है लेकिन अकलियत में भी बहुत से ऐसे मजाहिब के मानने वाले मौजूद हैं जो बड़ी तादाद में हैं। स्पेशली हमारे यूथ को बताता चलूँ कि हमारे यहाँ हिंदू कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, इस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का लोगों को पता है, हिंदू कम्युनिटी का और सिख कम्युनिटी का इतने ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो भी यहाँ पर बसते हैं, और वो भी उतने ही पाकिस्तानी जितने हम पाकिस्तानी।
2: बिल्कुल।
1: तो मसला वहाँ पर आता है जब इनसे इंटरेक्शन कहीं इनका हो जाए तो ये समझ ही नहीं पाते कि हमने कैसे उनको डील करना है, कैसे उनको बराबर का पाकिस्तानी समझना है। और कुछ लोग तो बाकायदा उनको इंडियन कह देते हैं कि जी हिंदू है तो इंडियन होंगे, शायद लोगों को ये सेंस ही नहीं है कि हिंदू कम्युनिटी अच्छी खासी है पाकिस्तान आबाद, स्पेशली सिंध के अंदर अगर आप चले जाएं तो वहाँ भी अच्छी खासी इनकी तादाद मौजूद है। और अभी बात हम ऑफ एयर कर रहे थे, थर वगैरह की बात कर रहे थे, तो मिट्टी में अगर हम जाएं तो वहाँ पे 51% आबादी जो है वो हिंदू कम्युनिटी की है और 49% मुसलमान है। तो स्टिल वहाँ पे लोग बड़ी हार्मनी से, बड़े अच्छे तरीके से, पीसफुल तरीके से रहते हैं। तो ये इस पर आप जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए।
2: जी बिल्कुल, हम आसब आपकी बहुत हेल्दी यानी कि इन्फॉर्मेशन है और आप अच्छे ऐड कर रहे हैं। असल में हम लोगों का इंटरफेथ हार्मनी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कोई इतने बड़े नहीं है। हम लोग डिफरेंट छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हम लोग डाइवर्सिटी टूर्स करते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें जो इंटरफेथ हार्मनी या कह लें तमाम मजाहिब बैनुल अमानगी से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके हम गैदरिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि आपस में जो एक प्यार मोहब्बत और भाईचारे वाला एलिमेंट है ना वो क्रिएट होता है। अब जो डाइवर्सिटी टूर है उसमें हम करते क्या हैं, जैसे कि आपको पता है कि रिलीजियस प्लेसेस हैं, सिखिज़म की हैं या सिखों के गुरुद्वारे हैं, या हिंदू हैं तो उनके मंदिर हैं, और अगर मुस्लिम हैं तो उनकी मस्जिद हैं, जिस तरह बादशाह मस्जिद लाहौर में बहुत मशहूर है। तो हम लोग डाइवर्सिटी टूर्स करते हैं, उसमें हम लोग जो नौजवान लोग हैं, अगेन ये कि उसमें हम लोग जेंडर बैलेंस के साथ चलते हैं, फीमेल्स और मेल पर्सन का 50-50% का बैलेंस होता है, और उसमें हम हिंदू मज़हब सिखिज़म क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी से जो नौजवान हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं या दूसरे भी लोग हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं और उनका डाइवर्सिटी टूर होता है। उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि एक तो गैदरिंग हो जाती है, फिर उन लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का जो है ना मौका मिलता है, पता चलता है कि यार जो हमारे मिथ हैं या जो हमारे पैराडाइम्स क्रिएट हुए हैं हमारे माशरे में या पाकिस्तान में उनको हम ब्रेक करते हैं, कि ये नहीं है कि यार दूसरे मजाहिब के लोग जो हैं खुदा ना ख्वास्ता वो जो हैं वो क्या कह लें कि शूदड़ हैं या जिस तरह से दूसरी टर्म्स यूज़ की जाती हैं, तो वो लोग भी इंसान हैं, वो भी हमारे बहन भाइयों की तरह हैं। तो हम लोग एक जो इंटरफेथ हार्मनी का एलिमेंट है वहाँ से क्रिएट करते हैं। फिर हम इस तरह हमारी जो कॉन्फ्रेंसिस होती हैं या जो हमारे अवेयरनेस सेशन होते हैं उसमें हमारी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि हमारे जो दूसरे हिंदू भाई हैं या जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, सिखिज़म से ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको हम इन्वाइट करते हैं, एज़ अ गेस्ट स्पीकर भी इन्वाइट करते हैं, एज अ पार्टिसिपेंट भी इन्वाइट करते हैं, और हम उनके इदारों में जाके भी जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स या अवेयरनेस सेशंस करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है CHRE सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, और उनका एक दारुल मुसर्रत के नाम से एक प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पे बिल्कुल उसके जो एडजिस्टेंट एक जो है ना वो चर्च है काफ़ी बड़ा, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे हमारी जो है वो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, तो वो हम कलेबोरेशन में कर रहे होते हैं जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इस तरह से हम इंटरफेथ हार्मनी और पीस बिल्डिंग का एलिमेंट लेकर चलते हैं। और दूसरा जो हमारा क्या नाम है उसका एलिमेंट है कि हम लोग इन लोगों को इन्वॉल्व कैसे करते हैं या ये लोग किस तरह से हमारे से इंटरलिंक होते हैं, क्योंकि हमारी नेटवर्किंग ज़्यादा है, या जिस तरह आपने बात की कि जो हिंदू हैं या जो सिखिज्म के लोग हैं उनको कह दिया जाता है यार आप इंडिया से तो नहीं आए, तो वो अगेन यही कि पैराडाइम्स जो क्रिएट हुए हैं उनको हम ब्रेक करते हैं और थ्रू ये जो चीज़ें हैं उनके साथ इंटरलिंक होती हैं।
1: ज़बरदस्ती आपने बड़ी इनकसारी से काम लिया ये कह के कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो डोमेस्टिक टूर्स हैं ये बहुत बड़ा काम है।
2: बिल्कुल,
1: तो आप यूथ को एक इनसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको फर्स्ट हैंड नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो लोगों से इंटरेक्ट करें जिनके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, जिनके बारे में वो नहीं जानते। एक बार एक इदारे के साथ जाने का इत्तेफाक हुआ एक चर्च में, वहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स भी हमारे साथ थे और सिलसिला ये था कि उनका इबादत का टाइम भी था, संडे को हम लोग गए वहाँ पे, सर्विस होती है संडे को उनकी, तो जो वॉलंटियर्स हमारे साथ गए वो मुस्लिम्स थे सारे।
2: सही।
1: तो दे वर सरप्राइज्ड टू सी के जिस तरह से इबादत वो कर रहे हैं, वो हैरान हुए कि यार ये तो हम तो कुछ और ही समझते, पता नहीं ये क्या कर रहे होंगे वहाँ पे। और
2: जी जी।
1: और फिर वो बड़े क्यूरियस भी हुए जानने के लिए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अच्छा इस तरह से जो ये इनकी वो है एक रिचुअल जानने का मौका मिला। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा बहुत बड़ा काम है जी कि आप यूथ को ये मौका फराहम कर रहे हैं, और इस पे इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे और आपके चंद एक दूसरे प्रोजेक्ट पे भी गुफ्तगू करेंगे। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

www.musicbeat.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

www.musicbeat.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया और मेरा नाम है डॉक्टर अमारा मसूद फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मोजिस सामीन, आज हम आपसे बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये जो रीसेंट ट्रेंड्स और रीसेंट वर्ल्ड में जो इसके प्रॉब्लम्स हैं, हम इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं और किन चीजों को हम मद्देनजर रखकर और इस फील्ड को और अपने स्टूडेंट्स को इससे मजीद फायदा हासिल करवा सकते हैं। आज के इस शो में मेरा साथ देंगी डॉक्टर हिरा मुबीन। She is currently serving as an associate professor in Department of Biotechnology, Faculty of Science and Technology. Assalamu alaikum, madam.
1: Walaikum assalam.
0: क्या हाल है आपका?
1: मैं ठीक हूँ, मैं समारा, आप बताएं।
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैडम, बस आपसे आज हम इसी मौजू पे बात करना चाह रहे हैं कि मैडम आपने देखा है कि कुछ रिसेंट पिछले 4-5 साल से एक ट्रेंड में जो फील्ड्स चल रही हैं वो ये कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी। बेशक हम इन फील्ड्स की इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम आज इस टॉपिक को यहाँ पर लेकर बैठे हैं कि हम ये बात करना चाहते हैं कि क्या इन डोमेन्स के बाद बायोटेक्नोलॉजी या जो बेसिक साइंसेज हैं क्या उनकी अहमियत कम हो गई है? क्या आज के दौर में सर्वाइव करने के लिए और बाकी सब मुख्तलिफ कामों के लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी और डिफरेंट डोमेन्स जो साइंसेज की हैं इनके ऊपर हम चाहते हैं कि आज हम अपने सामीन को इस बारे में आगाही दें कि बाकी डोमेन्स जरूर अच्छी हैं, आती जाती भी रहती हैं, लेकिन इससे ये नहीं होता कि पिछली फील्ड जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं बड़े अरसे से उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। डेफिनेटली कुछ अरसे के लिए एक फील्ड रोटेशन में आती है, उसके बाद अगली फील्ड आ जाती है। तो डॉक्टर हिरा, थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या और आप इसको वर्ल्ड में किस तरह से रिलेट करेंगी।
1: थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हमारा। पहली बात तो ये कि हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी फील्ड की इम्पोर्टेंस कम हो गई है। हर चीज़ का एक वक्त होता है और वक्त के साथ साथ आपको पता है टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ज़रूर है और बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हम ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं, हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम बेटर मेडिसिन प्रोड्यूस करना चाहते हैं या हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ करके इन सब चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम कहते हैं कि हम लाइफ को हेल्थियर बना सकते हैं, सेफर और बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है। और बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी बेस्ड हम कह सकते हैं मॉडर्न साइंस का एक वो है ट्रेंड, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों में इनोवेशंस और बहुत सारी चीज़ों में प्रोडक्शन के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू और डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करके लोगों को सेफर लाइफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं।
0: ये डॉक्टर हिरा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं इस चीज को सेकंड करूंगी आपकी बात को कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी मिक्सचर ऑफ डोमेन्स है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंसेस, इंजीनियरिंग। अब इसमें हम लिविंग सिस्टम्स के सेल्स की बात करेंगे, जीन्स की बात करेंगे, माइक्रोब्स की, प्लांट्स की बात करेंगे और किस तरह से इनसे हम प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, सॉल्यूशंस बना सकते हैं, किस चीज के लिए, ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये बेसिकली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है ग्लोबली। इसके अलावा अगर आप रिसेंटली भी अभी देखें तो ये जो COVID-19 का पेंडेमिक गुजरा है, इसमें वैक्सीन डेवलपमेंट जो थी वो बायोटेक के उससे हुई थी, प्लेटफॉर्म से। सिमिलरली आप सब लोग ही जानते हैं डायबिटीज के लिए इंसुलिन, इसका प्लेटफॉर्म भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है और बेसिकली ये बायोटेक की डोमेन है। सिमिलरली हम मिलियंस ऑफ पीपल को डेली बेसिस पे फीड कर रहे होते हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन और इससे रिलेटेड सारा काम ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। सिमिलरली आप अगर कहें कि जी आप डीएनए बेस्ड डायग्नोसिस करना चाहते हैं कुछ डिजीजेस को स्टडी करने के लिए, इवन नए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए, तो ये काम भी बायोटेक की अम्ब्रेला के अंदर आता है। तो इसका मतलब यही है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट और इंडस्ट्री, इन सबको अगर हम कहें कि हम एडवांस स्टडी कर रहे हैं तो दिस बेसिकली कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा मैडम, मैं आपसे एक बात और पूछूंगी कि आपकी फील्ड के हवाले से, स्पेशली हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से, पाकिस्तान में क्या एडवांसमेंट हो रही है, कौन सा काम है जिस पे आजकल बहुत काम हो रहा है? और आपको पता है रीसेंट ट्रेंड में जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये चीजें भी बहुत हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आप अपनी फील्ड को रिलेट करें ये इस रीसेंट ट्रेंड्स के साथ, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगी?
1: जी बिल्कुल, मैं समारा, ऐसा है कि हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि डिफरेंट कलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं जिनमें रिसर्च हो रही है, तो हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारा ऐसा काम जो डायग्नोस्टिक्स में, जेनेटिक्स में, जीनोमिक्स में एडवांस मेथड्स यूज करके अब हो रहा है. पहले बहुत सारी डिजीजेस ऐसी थी जो डायग्नोसिस तक नहीं जाती थी और उनके लिए कोई ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज या आप कह लें सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं थे. अब जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं या बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, वो मिलकर काम कर रही हैं. रिसर्चर्स जो हैं दे आर प्रोवाइडिंग सम सजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस. और इसी तरह जब वो डेटा रिसर्चर्स हमारी चूंकि फील्ड है रिसर्च की, तो हम यहाँ पे जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिसर्च करवाते हैं, उसके बाद हम उन प्रोजेक्ट्स में से उनको पब्लिकेशंस की तरफ लेकर जाते हैं, उससे जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं हम वो डॉक्टर्स तक पहुंचाते हैं और डेफिनेटली डॉक्टर्स उस पे हमें फर्दर ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं या उन मरीजों को वो ट्रीट करने के लिए उनको फर्दर नए से नए रास्ते या सॉल्यूशंस मिलते हैं.
0: थैंक यू मैडम. यहाँ पर हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक. सुनते रहिएगा FM 92.6 UCP की.

0: वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अमारा मसूद फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मेरे साथ आज गुफ्तगू में शरीक हैं डॉक्टर हेरा मुबीन एंड शी इज करंटली सर्विंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम आज बात कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको BS, MS और PhD ऑफर करता है बायोटेक्नोलॉजी में, और इसके अलावा हम MS फोरेंसिक साइंस और MS क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी ये भी ऑफर करते हैं। इसी हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। हमने अभी ब्रेक से पहले थोड़ी BS के हवाले से बात की थी, तो डॉक्टर हेरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो हम MS बायोटेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं और MS फोरेंसिक साइंस ऑफर कर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, क्या UCP कोई स्कॉलरशिप हमें देता है और इसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है?
1: थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमारा। बिल्कुल, हमारे पास जो MS बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री है ये एक रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है, और इसमें चूंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसका स्कोप हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, फूड में, नैनो टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट में और इंडस्ट्री में है, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको प्रैक्टिकल स्किल्स पे एक्सपर्ट करते हैं, हम उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हैं। इसमें जो रिसर्च डोमेन्स हैं हमारे पास, जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें मोलेकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स और नैनो बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो उस पर हम उनको काम करवा रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये सवाल होता है कि हमारी जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी डिग्री कम्प्लीशन के बाद, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो दे कैन बी प्लेस्ड इन टू अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। वो रिसर्चर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस में उनकी जॉब हो सकती है, डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल लेबोरेटरीज का पार्ट बन सकते हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कुछ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसका भी पार्ट बन सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि इसमें बहुत सारी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें वो जिनको अडॉप्ट करके वो डिफरेंट जगह पर उनकी जॉब प्लेसमेंट हो सकती है।
0: मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगी, और हमारे पास यहाँ पर रियल टाइम PCR की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और इसके अलावा हमारे पास बड़े अच्छी कोलैबोरेशंस हैं जिसमें हम सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं कि हम उनको सीक्वेंस भेज के अपना प्लांट का, बैक्टीरिया का, इनका सिक्वेंसिंग करवा के और बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। डॉक्टर हेरा, MS फोरेंसिक के हवाले से भी हमें बताएं कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो MS फोरेंसिक में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ये हमारा बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम जा रहा है और काफी लॉयर्स और इवन पुलिस ऑफिसर्स वगैरह भी MS फोरेंसिक साइंसेज में डिग्री लेना चाहते हैं, तो थोड़ा इसकी इम्पोर्टेंस बताएं कि UCP ने ये जो इनिशिएटिव लिया है इस पे हमारे कैरियर स्कोप वगैरह क्या है?
1: जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और लकीली वी आर ऑफरिंग दिस प्रोग्राम एज वेल। इसमें हमारे पास चूंकि स्टेट ऑफ आर्ट लैब्स हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं, और चूंकि आपको पता है कि फोरेंसिक की डिफरेंट डोमेन्स हैं, जैसा कि फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है, DNA सीरोलॉजी है, डिजिटल फोरेंसिक्स है, ठीक है, इसके अलावा आप इसमें डिफरेंट फील्ड्स में रिसर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो DNA प्रोफाइलिंग पे काम कर सकते हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स सीख सकते हैं, फिर फोरेंसिक्स में एंटी नारकोटिक्स की डोमेन में जा सकते हैं। तो हमारे पास चूंकि इसमें भी बहुत सारी ऐसी लैब्स अवेलेबल हैं और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ये भी एक बहुत अच्छी और इमर्जिंग फील्ड है, और इसमें हमें अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि वो MS फोरेंसिक साइंसेज में एडमिशन लें और इसको एज अ करियर परस्यू करें। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग प्रोग्राम नाउअडेज।
0: बिल्कुल डॉक्टर हेरा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं बिल्कुल सेकंड करती हूँ आपकी बात को, और स्पेशली जब हम नॉर्मली पेरेंट्स हमसे यही क्वेश्चन करते हैं कि जी हम MS बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इवन MS फोरेंसिक हो गया, उसके बाद जी स्टूडेंट जो हैं वो क्या करेंगे, तो हम उनको जो हमारे अलमनाए हैं उनके बारे में बताते हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेके, इवन फुल ब्राइट और ये दाद स्कॉलरशिप अवेल करके, और वो मतलब अब्रॉड में बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज में सर्व कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें यही कहूंगी कि इसके कैरियर स्कोप में सब रिसर्च और एकेडेमिया के ग्रेजुएट्स कैन इजीली परसू एन MS और PhD इन पाकिस्तान और इन अब्रॉड, एंड दे कैन डू गो इनटू डिफरेंट रिसर्च कैरियर्स। बहुत सी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी वो RA की या रिसर्च असिस्टेंट की जॉब कर सकती हैं। सेकंड आ जाती है जी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इसके अलावा सीड कंपनीज, आपकी एग्री बायोटेक की कंपनीज, ठीक है, फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज, आपकी डायग्नोस्टिक लैब्स, ये सब की सब वो इंडस्ट्रीज हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं, ठीक है, और खास तौर पर उन ग्रेजुएट्स को जिनका कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, इंटर्नशिप वगैरह बच्चों ने की होती है थोड़ा। थर्डली मैं आपको करियर प्रोस्पेक्ट्स में ये बताना चाहूंगी कि ये जो हमारी ग्रोइंग फील्ड है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, और जीनोमिक डेटा एनालिसिस की, जिसके ऊपर आजकल वर्ल्ड वाइड ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का डेटा और इसके ऊपर काम हो रहा है, QTL एनालिसिस हो रहा है, मार्कर्स को, जीन्स को आइडेंटिफाई करना और उनको किसी ट्रेड्स के साथ लिंक करना, ठीक है। तो यानी सीक्वेंसिंग जो है वो डे बाय डे अब चीपर होती जा रही है, क्योंकि हमारे पास रिसेंट अब एलिमिना सीक्वेंसिंग और बहुत सी ऐसी अप्रोचेज आ गई हैं जो एक दिन में आपको ये ब्लड सैंपल और ये आपको पूरा DNA एनालाइज करके दे देती हैं। उसके बाद उस DNA को, उस जीनोमिक डेटा को इंटरप्रेट करना, उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, तो ये इस वक्त एक कैरियर पाथ बन चुका है। और हमारे पास आपको पता है बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर डेटा बहुत अवेलेबल है, लेकिन उसकी एनोटेशन एनालिसिस उसके ऊपर अभी बहुत काम करना बाकी है। तो अगर कोई ऐसा बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट होता है जिसकी बायोटेक्नोलॉजी की डोमेन में भी थोड़ी अच्छी ग्रिप होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और इसके अलावा वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इनको भी ऑपरेट करना जानता है, तो वो तो एक बिल्कुल एसेट है। स्पेशली आजकल पाइथन लैंग्वेज में अगर कोई बच्चे काम कर रहे हैं तो वो फ्रीलांसिंग करके बड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं। फिर हम ये रेगुलेटरी रोल्स में, क्वालिटी रोल्स में, आप ये फूड सेफ्टी की जो इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, उन पे काम कर सकते हैं। और लास्टली एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, हम अपने स्टूडेंट्स को सेकंड सेमेस्टर थर्ड से ही ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आप काम करना शुरू करें, क्योंकि हमारे अब यहाँ पे बहुत से सेटअप ऐसे हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह और उसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं, एग्रीटेक में और प्रिसीजन फार्मिंग में स्पेशली बड़ा काम हो रहा है। तो डॉक्टर हिरा, आप मुझे थोड़ा बताएं फिर के अब मजीद हमारी कोलैबोरेशंस और कोलैबोरेटर्स कौन कौन से हैं जिनके साथ हम और इफेक्टिव इस चीज को लेके चल सकते हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर, हमारा ऑलरेडी हम बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और इसमें ना सिर्फ हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हमारी हैं जिसमें हम अपना डेटा जो है वो बाहर से एनालिसिस करवाते हैं। इसमें हम ना सिर्फ ये कि हम अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी ये काम कर रहे हैं, और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि डिफरेंट जो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं उसके हवाले से भी हम उनके साथ कोलैबोरेट करें। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये जो फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम आराम से किसी भी फंडिंग एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करके अपने प्रोजेक्ट्स रन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्किल्स चाहिए, इसके लिए हमें एक्सपर्टीज चाहिए, इसके लिए हमें स्टूडेंट्स को ये बताना ज़रूरी है कि हम इस फील्ड में रहते हुए कुछ प्रोजेक्ट प्रपोज करें और उन प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट वो हम फंडिंग लें और उनसे इसके ज़रिए हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसी तरह हम हॉस्पिटल्स के साथ और इसके अलावा डिफरेंट फार्मा कंपनीज के साथ और एग्रीकल्चर फर्म्स के साथ और फूड इनोवेशन सेंटर्स के साथ और बहुत सारे डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके हम अपने फंड्स को गेन कर सकते हैं। और अपने, चूंकि हमें इसके लिए जितनी भी फंडिंग हो वो कम होती है, हमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, एनालिसिस करना है, तो इसी तरह से हम कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हो सकते हैं, हम इनोवेशंस ला सकते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको खुद भी प्रमोट करें और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करें कि वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और इसको एक्सप्लोर करें।
0: और इस पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली हमारी फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में NRPU की जो ग्रांट है वो भी विन की है डॉक्टर मदिया ने, और डॉक्टर हिरा ने इटसेल्फ जो है वो कॉम्स्टेक की ग्रांट विन किया। तो हमारे टीचर्स जो हैं वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और इनके साथ और प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़े फोकस्ड हैं, और उसमें फिर हम अपने ही स्टूडेंट्स को एज एन रिसर्च असिस्टेंट यहाँ पे हायर करते हैं, और यहाँ पर हमारे फंड्स, इंटरनल यूनिवर्सिटी हमें फंड्स देती है मोर देन 1 बिलियन के, आप इसके ऊपर काम करें। हम छोटी छोटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए अपने BS के स्टूडेंट्स को 50,000 तक फंड देते हैं कि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के नाम पे हमसे फंड्स ले लें, जस्ट प्रपोज योर आइडिया, और अगर वो अच्छा लगा तो हाई अप्स आर देयर टू सपोर्ट यू। तो प्लीज आप ये बायोटेक्नोलॉजी का जो डोमेन है इसको एक्सप्लोर करें। UCP में ये डोमेन 2015 से हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफर कर रहे हैं। हमारा पहला बैच 2019 में पास आउट हुआ था, वो स्टूडेंट्स अब बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के आप उनकी सक्सेस स्टोरीज देख भी सकते हैं, उनको लाइक भी कर सकते हैं। तो इसी ऊपर काम करें, और BS, MS और PhD बायोटेक्नोलॉजी एंड MS फोरेंसिक साइंस एंड MS क्लाइमेट चेंज वगैरह, ये ऑफर्स हमारी बायोटेक्नोलॉजी के डोमेन से आ रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिरा फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई एम डॉक्टर अमारा मसूद साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicfeed.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

www.music.edu.pk. FM 92.6 Live Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6 UCP की दुनिया।
5: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

इस सुरौर तान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।